0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz
4: City FM 89.99.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. Jazz Cash से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए Jazz Cash है ना.
1: City FM 89.
6: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
7: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त सवाबित लागू हैं.
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: With food prices jumping up by 50%, a simple, nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
11: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
12: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
13: City FM 89.
14: You got me going crazy.
15: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Lunch time. अपनी कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
3: सिटी एफएम 89।
4: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
5: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट। हाउएवर, यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड। प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी मदर, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
1: City FM 89.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City FM 89.
11: You got me going crazy.
1: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
4: FM
1: 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: You're listening to City FM 89.
7: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
1: सिटी
8: 89.
9: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: सिटी FM 89.
10: फूड बिल्ड्स अ चाइल्ड्स बॉडी

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास कैश है ना?
3: सिटी एफएम 89।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: You're listening to City FM 89.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना?
1: City FM 89.
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
7: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट, हाउएवर यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड। प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
5: You're listening to City FM 89.
0: You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: City FM 89, Tapu Javeri and the Dark Room. That was Kellis telling us what all her milkshake brings to the yard. And this is the fabulous Sophie Ellis-Bextor murdering everything on the dance floor.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: City FM 89.
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: IELTS seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
8: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त सवाबित लागू हैं।
9: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: City FM 89, we're playing your song.
11: Food builds a child's body up, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
12: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
3: City
13: FM 89.
3: You're listening to
14: Dark Room with Tapu Javeri.
15: Mary J. Blige with Family Affair. Her first album, What the 411, was just incredible. And moving on, we have more great music. This is Beyoncé with her Family. This is Destiny's Child and Bootylicious.

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: City FM 89. We're playing your song.
6: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
7: City FM 89.
8: Mornings evolve, and so do we.
9: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
10: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
8: The freshest music, the hottest gossip.
9: And the energy Gen Z lives on.
8: It's bold, it's current, it's your morning routine.
9: The Breakfast Show.
8: Only on City FM 89.
0: City FM 89.
11: Sound.
9: You're listening to
12: Dark Room with Tapu Javeri.
13: You're listening to City FM 89, Tapu Javeri and the Dark Room. I hope you all are enjoying the music. We have a ton more to play for you. A big shout out to my Dark Room family, to the wonderful Sam. Up next, the Pussycat Dolls again with Buttons.
14: What it do, Betty Bump?

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: सिटी एफएम 89, योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन.
4: 106 आउट ऑफ 123, दैट्स वेयर पाकिस्तान सिट्स ऑन द हंगर इंडेक्स. दिस इज मोर देन अ बैड रैंक. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
5: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
6: Dark Room with Tapu Javeri.
7: Moving away from rap, this is the fabulous Mark Morrison with his one-hit wonder, Return of the Mac.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m. We are
3: City FM 89.
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: BTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें जवाबित लागू हैं।
6: City 89.
7: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: City.
3: City FM
6: 89. You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: We're coming close to the end of the show. Let's wake you up a bit. This one is En Vogue with My Loving. You're Never Gonna Get It.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hain.
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89. Don't adjust your dial.
2: This is
8: City FM 89.
9: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: City FM 89, we're playing the song.
0: You're listening to
10: Dark Room with Tapu Javeri.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: लॉग ऑन टू facebook.com/cityfm89 एंड शेयर योर फीडबैक.
5: मॉर्निंग्स इवॉल्व एंड सो डू वी.
6: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your host on the breakfast show.
5: The freshest music, the hottest gossip,
6: and the energy Gen Z lives on.
5: It's bold, it's current, it's your morning routine.
6: The breakfast show.
5: Only on City FM 89.
8: City FM 89.
6: On the dial.
9: With food prices jumping up by 50%, a simple, nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
10: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
11: City FM 89.
12: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
13: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
14: A new era begins.
15: City FM 89.
6: You're listening to

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
1: City
3: FM 89.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
1: City
3: FM 89.
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
6: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
7: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
8: यू कांट बिल्ड अ स्ट्रांग होम ऑन अ वीक फाउंडेशन. व्हेन एन एक्सपेक्टेंट मदर सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, हर अनबोर्न चाइल्ड सफर्स टू. Entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
1: You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future Sounds.

0: to your road rage.
1: City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: सिटी
4: एफएम
1: 89.
5: अ प्लेट दैट इज फुल मे नॉट बी एनफ. मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान्स चिल्ड्रन हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग देयर कॉग्निशन, ग्रोथ एंड फ्यूचर. द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर. एक्ट फॉर न्यूट्रिशन, अ कॉन्फ्रेंस ऑन मेल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
6: City FM 89. We're playing your song.
8: It's all good.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.